चरणौ शरणं प्रपद्ये। दुःस्वप्न दुःशकुन दुर्गति दोषनाशौ शान्तिप्रदौ सततमङ्गलौ।

शरणं प्रपद्ये। पापापहारि शुभमन्त्रनुतौ सुपूतौ नित्यौ नितान्तवरदौ भवबन्धनाशौ शीतोष्णदुःखपरिहारकरौ पवित्रौ श्रीनारसिंहचरणौ शरणं प्रपद्ये। गङ्गाजलौघनिलयौ

कृपया परमात्मवन्ति इत्थं प्रपत्तिरिह खाद्रिनृसिंहदेव मुद्दिश्य या विरचितो परिपूर्ण भक्ति।

0: धीमित धीमित कीटता कीटता जन तरगड़ तरगड़ता तत्तरित धीमित धीमित कीटता कीटता जन तरगड़ तरगड़ता तत्तरित धीमित तरगड़ तरगड़ता
1: तत्तरित धीमित तरगड़ तरगड़ता
0: तरगड़ तरगड़ता
1: तरगड़ तरगड़ता
0: तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़ तरगड़ता तरगड़

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। सेंटर आस्क्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू बिल्ड 30 डेज एलपीजी रिजर्व्स एज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शोज मेजर गेन्स इन मटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ। Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rain, fall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru.

0: Reddy and Chirag Shetty will also be in semi-final action. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. US Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति उ मिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान

0: के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग

0: आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुँचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मीन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया।

0: इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के

0: लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट ऑलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం, లలిత గీతాలు.

तेरा ध्यान किधर है गोरी? सूट बूट ये इंग्लिशानी, मेरा नाम है भीमा, यानी नेम माई है भीमा। टोपी लंदन।

छुट्टी हो गई तिलक दिन तिलक दिन तिलक दिन तिलक दिन अरे गड़बड़ हो गई अरे छुट्टी हो गई अरे गड़बड़ हो गई।

0: जान बचाओ,
1: लोग पी जाओ,
0: इसमें क्या है
1: तुम्हें पता है,
0: पी के मरूं क्या और करूं क्या, मेरे सर पे ठंडा पानी डालो मैं चल।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल फुहारे।
1: क्यों कह रहे हो?
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस्या।

0: बरसते बादल।
1: नमस्ते अध्यापिका जी।
2: आयुष्मान भव, आओ बैठो फातिमा। आज हम बरसते बादल कविता पाठ के बारे में जान लेंगे।
1: जी हाँ अध्यापिका जी, बताइए।
2: पहले हम कवि के बारे में जान लेंगे। बरसते बादल कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत हैं। वे प्रकृति चित्रण के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, चिदंबरा आदि। इनका निधन सन 1977 में हुआ। अब बताओ, बरसते बादल कविता के कवि कौन है?
1: बरसते बादल कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत है।
2: ठीक है, अब सुनो। बरसते बादल कवितनु श्री सुमित्रानंदन पंत रचिंचार। वीरु प्रकृति वर्णनलो साटलेनि कविगा पेरुंदारु। वीरु क्रीस्तु शकं 1900లో అల్మోడా జిల్లాలో కౌసాని గ్రామంలో జన్మించారు। వీరి సాహిత్యానికి సాహిత్య అకాడమీ, గ్రంథి, పల్లవ్, గ్రామ్య, చిదంబర మొదలైనవి వీరి రచనలు। వీరి క్రీస్తు శకం 1977లో మరణించారు। అబ్బోలో, సుమిత్రానందన పంతక జన్మ కహా హువా?
1: सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ।
2: ठीक कहा। अब विषय प्रवेश के बारे में जान लेंगे। से सबकी प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब बोलो, सबकी प्रिय ऋतु क्या है?
1: सबकी प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु है।
2: ठीक है, सुनो। वर्षा ऋतु ఎల్లప్పుడూ అందరికీ ఇష్టమైన ఋతు। ప్రకృతి చాలా అందంగా ఉంటుంది సమయంలో। చెట్లు, పశువులు, పక్షులు, మనుషులు, చివరికి భూమి కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది। ఇలా ఈ సౌందర్యాన్ని కవి ఈ కవితలో వర్ణించారు। అచ్చా, అబ్ బతావో, బరస్తే బాదల్ కవితామే కవినే किस ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है?
1: बरसते बादल कविता में कवि ने वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है।
2: ठीक है, अब कविता में पहले पद्य के बारे में जानेंगे। झम झम झम झम मेघ बरसते हैं सावन के, झम झम झम गिरती बूंदे तरवों से चन के, चम चम बिजले चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब तुम पढ़ो।
1: जी हाँ अध्यापिका जी। झम झम झम झम मेघ बरसते है सावन के, छम छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के।
2: बहुत अच्छा पढ़ा। अब भाव सुनो। श्रावण मास के मेघ झमझम शब्द करते हुए बरसते हैं। पानी की बूंदे छमछम शब्द करते हुए वृक्षों के पत्तों से छनकर धरती पर गिरती है। बादल के हृदय में बिजली छमछम चमक रही है। उस समय दिन भी रात जैसा लगता है। इस अंधकार में मन के सपने धीरे धीरे जागते हैं। अंटे श्रावण मेघालु शब्दालु चेस्तू कुरुस्ताय। ఆ వర్ష బిందువులు చెట్ల ఆకులను తాకుతూ శబ్దం చేస్తూ భూమి మీద పడతాయి। మేఘాల హృదయంలో మెరుపులు మెరుస్తాయి। ఆ సమయంలో పగలు కూడా రాత్రిలాగా ఉంటుంది। ఆ చీకటిలో మన మనసులలో కలలు మెల్లగా మేల్కొంటాయి। అచ్చా, అబ్బోలో, కిన్కే హృదయమే బిజిలీ చమక్ రహీ హై?
1: బాదలోంకే హృదయమే బిజిలీ చమక్ రహీ హై।
2: ఠీక్ హై, అబ్ దూసరే పద్యకే బారేమే జాన్ లెంగే।
1: जी हाँ अध्यापिका जी, बताइए।
2: दादुरु टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्यम म्यम रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन पालक आर्दस कुसे कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन।

0: भावन मन भावन।
1: ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा तूने। अब भाव सुनो। वर्षा को देखकर कवि पंत जी का मन आनंदित होता है। कवि कहते हैं कि वर्षा की धार पकड़ने को मेरा मन झूलता है। आइए हम सब मिलकर सावन के गीत गाएंगे। इंद्रधनुष के झूले में हम सब मिलकर झूलेंगे। हमारे मन को आनंदित करने वाला यह सावन बार बार आने की आशा करेंगे। అంటే వర్షధారలను చూసి కవి పంతిగారి మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది. వర్షధారలను పట్టుకుని ఊగాలని మనసు కోరుతోందని కవి అంటున్నారు. కవి అందరినీ కలిసి శ్రావణ గీతాలను పాడమని కోరుతున్నారు. ఇంద్రధనస్సు అందరూ కలిసి ఊగాలని కోరుతున్నారు. మన మనసును ఆనందింపజేసే ఈ శ్రావణ మేఘం మరల మరల రావాలని కవి కోరుతున్నారు. అచ్చా అబ్బోలో, కవి किसके झूले में झूलने को कहते हैं?
0: कवि इंद्रधनुष के झूले में झूलने को कहते हैं।
1: ठीक है, अब कठिन शब्दों के अर्थ लिखो।
0: जी हाँ अध्यापिका जी, बताइए।
1: मेघ बादल मेघमो,
0: मेघ बादल मेघमो।
1: सावन श्रावण मास श्रावण मासमो,
0: सावन श्रावण मास श्रावण मासमो।
1: उर हृदय हृदयमो,
0: उर हृदय हृदयमो।
1: तम अंधेरा अंधकारमो,
0: तम अंधेरा अंधकारमो।
1: दादुर मेंढक कप्पा,
0: दादुर मेंढक कप्पा।
1: झिल्ली झींगुर कीचुराई,
0: झिल्ली झींगुर कीचुराई।
1: सोन बालक बगुला कोंगा,
0: सोन बालक बगुला कोंगा।
1: रज मिट्टी मट्टी,
0: रज मिट्टी मट्टी।
1: वारी पानी नीरु,
0: वारी पानी नीरु।
1: मन भावन मन को भाने वाला मनसुकु नच्चेदी,
0: मन भावन मन को भाने वाला मनसुकु नच्चेदी।
1: तृण घास का तिनका गड्डी परका,
0: तृण घास का तिनका गड्डी परका।
1: गगन आसमान आकाशमु,
0: गगन आसमान आकाशमु।
1: चातक एक पक्षी का नाम चकोर पक्षी,
0: चातक एक पक्षी का नाम चकोर पक्षी।
1: अच्छा, अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, उत्तर दो।
0: जी हाँ अध्यापिका जी, पूछिए।
1: सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला?
0: सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
1: ठीक है, सुमित्रानंदन का मरण कब हुआ?
0: सुमित्रानंदन पंत का मरण सन 1977 में हुआ।
1: श्रावण मास के मेघ कैसे बरसते हैं?
0: श्रावण मास के मेघ झमझम बरसते हैं।
1: ठीक है, घने बादलों को देखकर मोर क्या करते हैं?
0: घने बादलों को देखकर मोर म्याऊं म्याऊं करते हैं।
1: अच्छा, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, इसका अर्थ बताओ।
0: श्रावण मास के मेघ झमझम झम बरसते हैं।
1: घुमड घुमड कर मेघ गगन में भरते गर्जन, इसका अर्थ बताओ।
0: आसमान में बादल घुमड घुमड कर गर्जन करते हैं।
1: रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावलितर, अर्थ बताओ।
0: मिट्टी के कण कण में कोमल अंकुर फूटते हैं।
1: फिर आए जीवन में सावन मन भावन, इसका अर्थ बताओ।
0: हमारे जीवन में मन भाने वाला श्रावण मेघ फिर आए।
1: अच्छा, इस प्रकार बरसते बादल कविता में कवि ने वर्ष ऋतु की प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर ढंग से वर्णन किया। ई विधंगा ई बरसते बादल कवितलो कवि वर्ष ऋतु యొక్క ప్రాకృతిక అందం గురించి చాలా గొప్పగా వర్ణించారు। आज पाठ समाप्त हो गया।
0: धन्यवाद अध्यापिका जी।
1: शुभाशीष।
2: మీరింత వరకు बरसते बादल 10వ తరగతి కి హిందీ పాఠం విన్నారు। ఉపాధ్యాయులు డాక్టర్ వై యశోధర, విద్యార్థిని మోయిస్ ఫాతిమా। ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుండి వెలువడింది।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा।

0: सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग
0: शोभा बढ़ा चुकी हैं प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन की नेहरू से।

0: प्रतिष्ठित समारोह की आज शोभा बढ़ा चुकी है।
1: प्रयाग महाकुंभ से लेकर
0: लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।